0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनछेन नमस्कार कोलकाता,
4: नमस्कार कोलकाता
3: 107 FM रेनबो ते। नमस्कार कोलकाता,
4: नमस्कार कोलकाता।
5: আজও অর্থাঙ্গিনী ছবি থেকে রাপূর্ণা ভট্টাচার্য।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

नहीं आरजी फ्रेंड सिलेक्शन या पर्वत लेकर आपका पसंदीदा म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम नॉन स्टॉप गपशप विद योर आरजी फ्रेंड सिलेक्शन या पर्वत। और ऐसा है दोस्तों कि मतलब जानते ही हैं कि हाँ इस कार्यक्रम में मतलब कई सारे चीज़ होते हैं, जैसे कि एक चुटकी नुस्खे और फिर एक और सेगमेंट होता है आज के दिन, और साथ में एक विषय भी तो होता है जिस पर हम और आप मिलकर गुफ्तगु करते हैं, बातें करते हैं। तो आज क्या है ना कि आज जो विषय है वो डायरेक्टली 107 एफएम रेनबो से जुड़ा हुआ है, और कार्यक्रम भी आप 107 एफएम रेनबो पे ही सुन रहे हैं, क्योंकि हमारा और आपका कनेक्शन होता है दिल से दिल तक, यानी कि हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड होते हैं हम, और आज इसी दिल के बारे में बात करते हैं। तो मेरा जो विषय है वो ये है कि प्यार एक बार होता है या बार बार होता है। फिलहाल सबसे पहले जो गाना आपको सुनवाना चाहूंगी उसे हमने लिया है फिल्म इश्क से, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार अनु मलिक, और आवाजें हैं उदित नारायण और विभा शर्मा की।

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: आई लव यू।
2: यहाँ

ऐसा है दोस्तों कि आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं 107 एफएम रेनबो पर, जहां हम और आप जुड़ते हैं दिल से दिल तक। और आज दिल से रिलेटेड ही जो टॉपिक है हमारा नॉन स्टॉप गपशप में, कि प्यार एक बार होता है या बार बार होता है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। हाँ, तो ऐसा है कि जब बात प्यार की हो और कोलकाता में बारिश भी जमकर हो रही हो, तो क्यों ना ये गाना सुना जाए, क्योंकि बारिश पे गाना सुनना तो बनता है।

स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 10:17:18 और फिलहाल आपने ट्यून कर रखा है म्यूजिकली योर्स वाला चैनल यानी कि 107 एफएम रेनबो और प्रोग्राम सुन रहे हैं नॉन स्टॉप गपशप विद योर आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत। ऐसा है दोस्तों कि आज जो विषय है वो है कि प्यार एक बार होता है या बार बार, प्यार जीवन में एक से अधिक बार हो सकता है क्या। अजी इस सवाल पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मानव मन और भावनाएं समय के साथ विकसित होती है। जैसे जैसे आप नए लोगों से मिलते हैं और व्यक्तिगत अनुभवों से सीखते हैं, आप अलग अलग उम्र और परिस्थितियों में कई बार गहरा लगाव और प्यार महसूस कर सकते हैं। अब प्यार के अलग अलग रूप हो सकते हैं, इस पे भी बातें करूंगी, लेकिन बाय द टाइम आप सोचे और डायल करें 2243-7912 मैं आपको सुनवाती हूं ये अगला ट्रैक फिल्म बॉडीगार्ड से, एश किंग और क्लिंटन कैरेजो की आवाज में।

0: देखते हैं कि हमारे टेलीफोन लाइन पे कौन से कॉलर फ्रेंड हाजिर हैं और उन्हें क्या कहना है। हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: अच्छा, योगेश जांगड़े छत्तीसगढ़ से। अच्छा योगेश जी, आप तो वही योगेश जी है ना जिन्हें एक पुरस्कार भी मिला है,
1: गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड।
0: हाँ, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, तो ये पुरस्कार आपको किस लिए मिला है जरा ये भी बता दीजिए।
1: ये है जो हम लगातार जैसे आपसे भी फोन इन के माध्यम से जुड़ते हैं।
0: हाँ,
1: तो पूरे वर्ल्ड में जो फोन इन कार्यक्रम होते हैं
0: सबसे ज्यादा जुड़ने वाले कॉलर के रूप में आपको जो है ये सम्मान मिला है ना?
1: जी जी जी।
0: चलिए, बहुत बड़ी बात है कि आप जुड़े हैं कार्यक्रम में और आपका ढेर मतलब बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप में। और आज का जैसा विषय है, आप कार्यक्रम सुन रहे होंगे तो पता ही होगा कि प्यार एक बार होता है या बार बार होता है। वैसे मैं अगर कहूँ, अगर 107 से जो जुड़ता है वो एक बार अगर जुड़ गया ना, तो ता उम्र उसे 107 के साथ प्यार जो है उसका बना ही रहता है और ज्यादा गहरा होते जाता है। वैसे आप अपने विचार अब साझा करें हमसे।
1: देखिए, ये तो कह सकते हैं बार बार भी। देखिए, जैसे हम रेमबो कोलकाता से जुड़े गए लगभग लगभग 8-10 साल हो गया है, तो वो प्यार तो बरकरार ही है। कहने का मतलब तो होता तो एक ही बार अच्छे से है।
0: हाँ, एक बार अच्छे

0: से और बाद में क्या अच्छे से नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है,
1: बार बार वो बरकरार रहता है।
0: हाँ, मतलब कहना चाहते हैं कि कुछ प्यार प्रैक्टिस मैच की तरह होता है, कुछ टेस्ट मैच की तरफ होता है, और कुछ जो होता है वनडे की तरह।
1: देखिए, हाँ, जो हम रेनबो कोलकाता से लगातार जुड़े हुए हैं, यही तो प्यार है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और ये प्यार यूं ही बढ़ते रहना चाहिए, इसके रंग जो है प्यार के और गहरे होते रहना चाहिए, है ना।

0: भाई बहन है तो सबका एक अलग अलग मतलब वो प्रेम ही है कहने का मतलब है। लेकिन
1: अच्छा जब अच्छा योगेश जी एक बात कहूँ, मतलब शादीशुदा लोग से अगर आप प्यार की बात करिए तो क्या वो सच में सच बोलते हैं जब घर पे होते हैं तब, या फिर कुंवारे सच बोलते हैं?
0: मुझे तो लगता है दोनों सच नहीं बोलते।
1: दोनों सच बोलते हैं, चलिए अच्छी बात है कि दोनों सच बोलते हैं। तो आप जो कहना चाहते हैं कि घर में हम जिनके साथ रहते हैं हमारे रिश्तेदार, उनसे भी हमारा प्यार का कनेक्शन होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यूं अगर बात हम करते हैं ना प्यार की, तो अक्सर लोगों के दिमाग में एक यही बात आती है कि प्यार मतलब लड़की लड़का के बीच में प्यार। प्यार सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, आप प्रकृति से प्यार कर सकते हो, अपने काम से प्यार कर सकते हो, अपने हॉबी से प्यार कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात है कि खुद से प्यार करना सबसे बड़ी बात है ना।
0: जीवन में जो चीज हमें सुकून देती है या जिनसे हम कोई लाभ लेते हैं, या लाभ वाली ही बात रही है जो हमारे आसपास जो हमें दिखाई पड़ता
1: है। मैं बताऊं योगेश जी, सुनिए सुनिए, लाभ वाली बात मत कहिए, क्योंकि प्यार हमेशा अनकंडीशनल होता है ना, उसमें कोई शर्त नहीं। अगर शर्त आ गई बीच में तो फिर काहे का प्यार, कैसा प्यार, है ना।
0: हाँ जी, हाँ,
1: प्यार तो समर्पण का एक नाम है, दूसरा नाम है।
0: नहीं, कहने का मतलब वही है जो हमें आसपास जो हमें दिखाई देता है, जिनसे हमारा जुड़ाव रहता है किसी न किसी रूप में, तो वो एक प्रकार का प्रेम हो ही जाता है।
1: बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल।
0: अभी रात से भी बारिश हो रहा है।
1: हाँ, हमारे यहाँ भी जम के अभी बारिश हो रही है
0: जी।
1: और बारिश जब होती है ना तो ये प्यार का मीटर और बढ़ जाता है। चलिए बहुत अच्छा लगा आप जुड़े छत्तीसगढ़ से योगेश जी, यूं ही जब समय मिले तो कार्यक्रम में जुड़ा कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए,
0: धन्यवाद।
1: ऐसा है दोस्तों कि अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो डायल कीजिए 2243-7912। और फिलहाल शायद हमारे टेलीफोन लाइन पे कोई है, तो देखते हैं कौन है। हेलो, कोई तो थे, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होते रहती है। इंसान घबरा भी तो जाता है कि अजी बात क्या करे। और जब प्यार की बात आती है तो पहले तो चेहरा जो है वो लाल गुलाबी हो जाता है शर्म के मारे। कोई बात नहीं, शर्माइए मत, डायल कीजिए फिर से 2243-7912। बाय द टाइम यू डायल द नंबर, मैं प्ले करती हूँ अगला ट्रैक, कहूँ ना प्यार है का टाइटल ट्रैक।

0: ऐसा है दोस्तों कि हमारे कोई कॉलर फ्रेंड हाजिर हैं टेलीफोन लाइन पे, तो देखते हैं कि कौन है। हेलो।
1: हाँ जी, हाँ जी बोलिए।
0: नमस्कार, मैं किससे बात कर रही हूँ?
1: मैं सियावर राय आजमगढ़ से बोल रहा हूँ।
0: सियावर राय जी, आजमगढ़ से आपने फोन किया है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि वेस्ट बंगाल और यूपी, आजमगढ़ और कोलकाता जुड़ गया है 107 म्यूजिकली योर्स पर। और बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में। ऐसा है कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं वहां, तो आपको पता ही है कि आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो है कि प्यार एक बार होता है या बार बार होता है। तो आपके क्या विचार है?
1: मैं तो ये मानता हूँ कि प्रेम लौकिक हो चाहे पारलौकिक, दोनों ही प्रकार के प्रेम अंतहीन कहानी लिखते हैं। इनका प्रयास इसका प्रयास करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि अकथ कहानी प्रेम की। प्रेम की कहानी अकथ है, कही नहीं जा सकती, और उसकी अनुभूति के प्रेमानुभूति के लिए कबीर ने, अक्खर साधक कबीर भी कहता है, गूंगे की तरह तुतलाने लगता है और कहता है, अकथ कहानी प्रेम की ज्यो गूंगे का गुड़। गूंगे गूंगा गुड़ खा तो सकता है लेकिन अपने अनुभूति को बता नहीं सकता। उसी तरह प्रेम की व्याख्या नहीं की जा सकती, या जिसको हो जाता है उसे वही समझता है। दूसरा तो बाहर से उसके हाव भाव को देखता है तो कभी उसको मिसअंडरस्टैंड भी कर जाता है। वो सचमुच समझ लेता है कि गूंगा

0: अंतहीन और व्यर्थ की बात कर रहा है, किंतु असली अनुभूति तो उसे ही होती है जिसे प्रेम हो जाता है। और प्रेम मेरा मानना है कि बार बार नहीं होता, वह एक बार हो गया तो हो गया,
1: जिसे आप कह सकते हैं डिवाइन लव, डिवाइन रोमांस,
0: डिवाइन और अर्थली, विच एवर इट इज, या स्तुत्य है, प्रेम स्तुत्य है, चाहे वह लौकिक हो या परलौकिक, वह एक बार हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने अपने विचार रखे प्यार से संबंधित, और बहुत अच्छा लगा, और हमारे जितने सुनने वाले हैं शायद उन्हें भी अच्छा लगा होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, यूपी आजमगढ़ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको श्यावर राय जी।
0: धन्यवाद, धन्यवाद।
1: तो ऐसा है दोस्तों, अब अगला गाना आप सभी के लिए फिल्म कृष्णा से सुखविंदर सिंह और इस्माइल दरबार की आवाज में।
2: हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

आज के दिन। कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में सेगमेंट आज के दिन में मैं बात करूंगी 17 जुलाई के बारे में। और 17 जुलाई का दिन विश्व और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा ये तिथि कई ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलावों की गवाह रही है।

और 1998 में 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी की स्थापना के लिए रोम स्टैच्यू को अपनाया गया था और ऐसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है और 17 जुलाई 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है उसके अंत के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रेमन और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन के बीच पॉट्सडम सम्मेलन शुरू हुआ था। 1955 में कैलिफोर्निया के अनहेम में वॉल्ट डिज्नी द्वारा दुनिया के पहले डिज्नी वर्ल्ड थीम पार्क का उद्घाटन हुआ था। 1948 में 17 जुलाई को भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा सहित सभी सार्वजनिक सेवाओं में महिलाओं के लिए भी दरवाजे खोलने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था। 1989 में 17 जुलाई को अमेरिका द्वारा बनाए गए आधुनिक स्टिलथ बॉम्बर यानी कि नॉर्थ ट्रॉम्ब ग्रूमेन B-2 स्प्राइट ने कैलिफोर्निया के पामडेल से अपनी पहली सार्वजनिक उड़ान भरी थी। 17 जुलाई को जन्मे भारतीय व्यक्तियों की बात करूं तो जरीना वहाब 17 जुलाई 1959 को जन्मी थी। ये हिंदी और दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक दिग्गज अभिनेत्री हैं। 17 जुलाई 1969 को जन्म हुआ था भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और बॉलीवुड अभिनेता होने के साथ साथ सांसद हैं रवि किशन का जन्म हुआ था। 17 जुलाई को जन्मे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों की बात करूं तो एंजेला मर्केल का जन्म 17 जुलाई 1954 को हुआ था। ये जर्मनी के पूर्व और बेहद लोकप्रिय चांसलर रही हैं। वे लंबे समय तक दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में गिनी जाती हैं। 17 जुलाई 1952 को डेविड हैसलहॉफ का जन्म हुआ था। ये अमेरिकी अभिनेता और गायक हैं। इन्हें मुख्य रूप से टीवी शो बेवॉच और नाइट राइडर के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। जेम्स कैग्ने 17 जुलाई 1899 में जन्मे। ये हॉलीवुड क्लासिक युग गोल्डन एज ऑफ हॉलीवुड के बहुत ही लोकप्रिय और ऑस्कर विजेता अभिनेता थे। और फिलहाल रुक करते हैं हम अगले गीत की ओर। और जब आज विषय ही रहा है कि प्यार एक बार होता है या बार बार होता है, ये तो अलग अलग अलग लोगों पर अलग अलग इसके विचार होंगे। जैसी उनकी समझ होगी, जैसा वो अनुभव करते होंगे, उस हिसाब से वो सोचेंगे, कहेंगे और बताएंगे। लेकिन फिलहाल अगला गाना फिल्म खुद्दार से, और इस गीत को आप सुनेंगे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे कलमबद्ध किया है और राजेश रोशन ने संगीतबद्ध किया है।

0: हेलो हेलो
1: बोल रहा हूँ हावड़ा से।
0: हेलो
1: हाँ मैं
0: हमारी टेलीफोन लाइन पे कोई तो कॉल सेंड आज थे पता नहीं क्या। हेलो हाँ कौन बोल रहे हैं कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं अरूप बोल रहा हूँ हावड़ा से।
0: अरूप बोल रहे हैं हावड़ा से, तो अरूप पूरा नाम तो बताओ।
1: अधिकारी
0: अरूप अधिकारी हावड़ा से बोल रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में। ये बताओ अरूप कि तुम्हें कभी प्यार हुआ किसी से?
1: हाँ हुआ।
0: हुआ कैसे हुआ?
1: शादी से पहले।
0: शादी से पहले यानी कि लव मैरिज किए हो फिर है ना?
1: अभी तो मैरिज मैरिज किया।
0: और ये तेरी की ये क्या हो गया भाई, प्यार किसी से किए शादी किसी से किए?
1: मैं तो 64 हो गया, 64।
0: ओह 64 हुआ उम्र, उससे क्या मतलब फर्क पड़ता है? लेकिन ये तो गलत बात हो गई ना, आप प्यार किसी और से किए और शादी किसी और से कर लिए। चलिए ये बताइए कि प्यार एक बार होता है या बार बार होता है?
1: प्यार तो बार बार होता है लेकिन मन मिलता नहीं है।
0: बार बार होता है, मौका नहीं मिलता है, या जिम्मेदारियां इतनी होती है कि आगे कदम नहीं बढ़ा पाते है ना। तो चलिए ये अच्छी बात है और आपने ये बात कही, ये सबसे मतलब एक ये भी एक साहसिक कदम है, बहुत सारे लोग इस बात को कह नहीं पाते हैं। हाँ
1: सुनिए ना।
0: हाँ बताइए ना।
1: बोलिए वारिस का गाना दीजिए ना।
0: वारिस का गाना?
1: हाँ डिपार्टमेंट का म्यूजिक।
0: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम?
1: नहीं पुराना वाला नहीं।
0: तो
1: जीतन
0: अच्छा ठीक है, अगर वो मिला तो ठीक है, वरना मैं दूसरा गाना प्ले करती हूँ। अच्छा ठीक है आप रखिए। बहुत अच्छा लगा कि आप जुड़े कार्य

0: एक चुटकी नुस्खे,
1: एक चुटकी नुस्खे और एक चुटकी नुस्खे में मैं आज वो नुस्खा बताने वाली हूँ जो अक्सर हमने देखा है कि हमारे घरों में जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि बारिश के मौसम में अगर आप ज्यादा भीग जाते हैं और आपको लगता है कि सर्दी जुकाम हो गया है तो कुछ ज्यादा करने को नहीं है, बस एक कप पानी लीजिए और उसमें कच्ची हल्दी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। एक टुकड़ा छोटा सा कच्ची हल्दी जो है उसका पेस्ट बना लो और उस पानी में डालो, बॉयल करो और उसमें 4 से 5 गोल मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर क्रश करो और पानी में डाल दो और चाय की तरह उसे बॉयल करो और कुछ नहीं डालो। अगर डाल सकते हो तो थोड़ी तुलसी पत्ता डाल दो और उसे बॉयल करके उसे पीने से क्या है कि आपको बहुत फायदा पहुंचेगा, आपका इम्यूनिटी जो है बढ़ जाएगा और सर्दी खांसी भी जो है वो उड़नछू हो जाएगी। एक बार नहीं तो 2-3 बार जरूर कीजिएगा और फिर आपको जो महसूस होगा वो वाकई में फील गुड वाला एहसास महसूस होगा। चलिए फिलहाल अब समय हो चला है कि मैं आपसे आज्ञा लूं, क्योंकि अभी अगर यहां 107 एफएम रेनबो से नहीं जाऊंगी तो 11:10 पर एफएम गोल्ड पर 100.1 एफएम गोल्ड पर लो आ गई उनकी याद कार्यक्रम कैसे पेश करूंगी। तो फिलहाल चलते चलते आप सभी से यही कहूंगी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आपका दिन मंगलमय हो। और चलते चलते आप सभी के लिए ये खूबसूरत सा गीत अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म ब्रह्मशस्त्र से, और इस गीत को सुनते सुनते आज्ञा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सुलक्षणा पर्वत को। नमस्कार।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: 107 FM Rainbow, शात शुरे शारा दे, शात शुरे शारा दे।
2: कालो जोई बांग्ला गानेर धारा छुए जाक मोन, सुनछेन गान दोरिया 107 FM Rainbow ते। गान दोरिया, गान दोरिया, छुए जाक मोन, छुए जाक मोन।
3: স্টুডিওর ঘড়ি কাঁটা বলছে 11টা বেজে 3 মিনিট হয়ে 37 সেকেন্ড হয়ে গেছে। আপনি টিউন করেছেন 107 FM রেইনবো আর গান দরিয়া নিয়ে আজকে ফ্রাইডে স্পেশাল, মানে নজরুল গীতি। নজরুল গীতি নিয়ে রয়েছে আপনার বন্ধু আর জে অম্বালিকা। শুরু হোক গানে গানে।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: 107 FM रेनबो, शांत सुरे सारा दिन, शांत सुरे सारा दिन।
4: कालो जोई बांग्ला गानेर धारा छुए जाक मन, सुनछेन गान दोरिया 107 FM रेनबो ते। गान दोरिया, गान दोरिया, छुए जाक मन, छुए जाक मन।
5: স্টুডিওর ঘড়ি কাটা বলছে 12:04 হয়ে 51 সেকেন্ড হয়ে গেছে। আপনি টিউন করেছেন 107 FM রেইনবো, সঙ্গে রয়েছে আর যে অম্বালিকা, আর রয়েছেন তিনি কাজী নজরুল ইসলামের অনুষ্ঠান। একদম তাই, কাজী নজরুল ইসলামের গান নিয়ে গান দরিয়ায় রয়েছি আমি, থাকবো ঠিক একটা পর্যন্ত।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Good afternoon. You're tuned into your very own Akashvani Kolkata's 107 MHz FM Rainbow and Fast Rhythm Musical Chair. I am your Friday girl, Shiny. Oh yes, I will be taking you through this 58 long minutes journey of a completely, musically, absolutely yours Rainbow Rhythms. Yes, those colorful melodies. And guess what? Today, the 17th of July, is the World Emoji Day. Uh-huh. And what is that emoji that which you love to use the most? Bobby McFerrin, don't worry, be happy. Which would be the emoji?

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर। रेनबो।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तीन का तड़का और मैं हूँ आज आपके साथ आपके अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति, लेकर हाजिर हूँ इस कार्यक्रम को सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो दोस्तों, चांद हमेशा से मोहब्बत, उम्मीद और खूबसूरत एहसासों का प्रतीक रहा है, और जब किसी फिल्म का नाम ही चांद मेरा दिल हो तो जाहिर है उसमें प्यार, जज्बात और दिल को छू लेने वाली कहानी की एक खास झलक जरूर होती है। जी हाँ, अभी आप ये गीत सुन रहे थे फिल्म चांद मेरा दिल से फहीम अब्दुल्ला की आवाज में, और इस गीत के बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से पिरोया था सचिन जिगर ने। तो दोस्तों, ये जो गीत है नए दौर की ताजगी, रोमांस और खूबसूरत एहसासों को अपने सुरों में समेटे हुए है, और पहली ही बार सुनने पर दिल में अपनी जगह बना लेता है। तो दोस्तों, इस संगीत में और प्यार भरे, जी हाँ, इस सफर में, तो इस सफर की एक्चुअली शुरुआत तो हो ही चुकी है, और इस सफर की शुरुआत करते हुए आगे बढ़ते हैं, यानी कि इस कार्यक्रम में आपको मिलने वाला, जी हाँ बिल्कुल, जैसे आप सभी जानते हैं कि इसमें हम लेकर आते ढेर सारी बातें, मनोरंजन का स्वाद खोलने के लिए लेकर आते हैं, जी हाँ, आपके दिनों में, क्यों, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है तीन का तड़का, और ये जो गीत है ना, हमें प्यार की दुनिया में ले जाते हैं, कभी दोस्ती को याद ताज़ा कराने के लिए, तो कभी जीवन की खूबसूरत रंगों से रूबरू कराने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख करते हैं। लेकिन इससे पहले एक आवश्यक सूचना, जी हाँ दोस्तों, दोपहर 2:01 से अगले 2-3 घंटों के दौरान कुछ विहार, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, झाड़ग्राम, पूर्वी वर्धमान, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर और पश्चिमी वर्धमान जिले के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की बहुत संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, आप जहां रहें सुरक्षित रहें।

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।
1: तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी योजना के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। साथियों, जीवन अनमोल है, लेकिन जीवन अनिश्चित भी है। किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है घर का कमाने वाला व्यक्ति। अगर किसी कारणवश उसकी असमय मृत्यु हो जाए तो परिवार पर आर्थिक संकट आ जाता है। ऐसे ही संकट के समय परिवार को सुरक्षा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। यह योजना खास तौर पर आम नागरिकों को कम प्रीमियम में जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। और इस योजना की मुख्य विशेषताएं यह है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार या नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाती है। और यह बीमा सुरक्षा पूरे 1 वर्ष के लिए होती है और हर साल स्वतः नवीनीकरण भी किया जा सकता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है इसका कम प्रीमियम। इसमें केवल 330 रुपए प्रतिवर्ष का प्रीमियम देना होता है, जो सीधे बैंक खाते से स्वतः कट जाता है, यानी साल भर की सुरक्षा वह भी बहुत कम खर्च में। इस योजना का लाभ वे सभी लोग उठा सकते हैं

जिनकी उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो और जिनका बैंक खाता हो। बैंक खाता होना आवश्यक है क्योंकि बीमा राशि और प्रीमियम दोनों बैंक के माध्यम से ही संचालित होते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को किसी भी सरकारी या निजी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या जनधन खाते के माध्यम से लिया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया बहुत ही सरल है। बैंक जाकर या बैंक की ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से इस योजना से जुड़ा जा सकता है। साथियों, इस योजना का उद्देश्य केवल बीमा देना नहीं है बल्कि देश के हर नागरिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि किसी परिवार को अचानक आई विपत्ति के कारण आर्थिक रूप से टूटना ना पड़े। और आज के समय में जब जीवन में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक मजबूत सुरक्षा कवच बनकर सामने आती है। यह योजना गरीब, मध्यम वर्ग और आम जनता के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ नहीं लिया है तो अवश्य इस योजना से जुड़े और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करें।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: तो दोस्तों, स्टूडियो में समय हो चला 3:26:46, यानी कि घड़ी की सुई बता रही है कि हमारा साथ यहीं तक है। जी हाँ, अब से आप कुछ ही देर में सुनेंगे स्पॉन्सर प्रोग्राम NCERT की ओर से। तो तब तक दोस्तों, अपने दोस्त ज्योति को दीजिए इजाजत और जाते जाते आप सभी के लिए मधुर तराना छोड़े जाती हूँ। पर दोस्तों, मैं आप सभी से ठीक मिलने आऊंगी 5:15 पर। जी हाँ, 100.1 FM गोल्ड पर। जी हाँ, कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स लेकर। तो अभी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाजत और इस मधुर तराने को सुनते हुए साथ बने रहिए 107 FM रेडियो पर।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
2: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टि बाधित हूँ और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का।
2: गांव खिंदासा तहसील कोडायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
0: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
2: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रम्मा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
0: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। श्रोताओं, एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं, जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
0: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
2: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
0: जी श्रोताओं, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है
2: जी।
0: जब

0: जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया
1: जी।
0: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
1: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्म बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था
0: जी। श्रोताओं, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
1: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
0: जी, तो श्रोताओं, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
1: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: क्या 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी, तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
4: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
3: नव्या अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो, अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? विदित तुम बताओ।
5: ये तो बहुत आसान है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
4: रुको, मैं बताती हूँ।
3: तुम बताओ।
4: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
3: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था, और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
4: टैथिस महासागर।
3: वाह,
4: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
3: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
4: अलग होकर खिसकने लगे?
3: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
4: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
3: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
5: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
4: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
3: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई, दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
5: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
4: सर आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
3: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
4: जी।
3: देखो विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था, जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
4: फिर क्या हुआ सर जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
3: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
4: अच्छा?
3: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
5: सर मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
3: हाँ बेटा क्यों नहीं।
5: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
3: बहुत अच्छे, और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
4: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
5: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टैथिस सागर का क्या हुआ?
3: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टैथित सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
5: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?

0: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
1: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टाने मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टाने भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टाने समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
2: अच्छा, तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
2: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
1: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
1: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
3: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है, जिसमें उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
2: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
3: आजा, आजा, आजा।
2: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
4: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है।
3: अच्छा?
2: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
4: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
2: स्वामीनाथन बोला।
3: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
2: दादी ने पूछा।
4: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
3: अच्छा?
2: दादी काफी प्रभावित हुईं।
3: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा,
2: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
4: बस काफी है दादी,
2: उसने रूखे स्वर में कहा।
4: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
3: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना,
2: दादी ने पूछा।
4: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
3: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि

0: कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
1: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
0: बोलो
1: दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
0: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
1: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
0: अरे नहीं नहीं,
1: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
2: स्वामी नाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
1: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
0: अच्छा।
1: राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
2: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
0: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
1: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
0: 2 शेर राजम पर झपटे थे।
2: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
1: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या ऊल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
0: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
2: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
1: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
0: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
2: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
1: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
0: अच्छा।
2: दादी ने इसका समर्थन किया और हरीशचंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।

0: तो हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में
1: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनो कैफे कोलकाता,
4: कैफे कोलकाता
3: 107 FM रेनबो ते कैफे कोलकाता।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स

Come on, babe. तो दोस्तों, शुक्रवार की इस खुशनुमा शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूरे हफ्ते की भाग दौड़ और जिम्मेदारियों के बाद आखिरकार आ गया है वीकेंड का आगाज, यानी कि कुछ पल अपने लिए, अपनों के लिए और अपनी पसंदीदा गीतों के लिए। और अगर ऐसे में साथ हो फिल्मी संगीत का तो शाम और भी यादगार बन जाती है। और जब बात हो मस्ती, बेफिक्री और जिंदगी के खूबसूरत लम्हों की, खुलकर जीने की, तो ये गीत जो भी अभी हमने सुना, यानी कि फिल्म थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक का ये गीत लेजी लम्हे बर बस याद आ जाता है। क्योंकि ये गीत हमें यही सिखाता है कि कभी कभी जिंदगी की रफ्तार को थोड़ा धीमा करके हर पल का आनंद लेना भी जरूरी है। आखिर वीकेंड की शुरुआत इससे बेहतर अंदाज में और कैसे हो सकती है। तो आइए दोस्तों, इसी मस्ती और सुकून की एहसास के साथ शुरू करते हैं आपका अपना कार्यक्रम सेल्यूलॉइड सुपरहिट्स। जी हाँ, अगले एक घंटे तक हम सुनेंगे हिंदी सिनेमा के सदाबहार और सुपरहिट नगमे और जानेंगे उनसे कुछ जुड़े हुए दिलचस्प किस्से और ताजा करेंगे सुनहरी यादों को। तो दोस्तों, आज मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति, और तैयार हो जाइए इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि वीकेंड के संगीत भरी शाम का पहला रंग तो हम बिखेर ही चुके हैं, अब चलते हैं दूसरा रंग बिखेरने। जी हाँ, यानी कि अगले गीत के साथ। और आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए, साथ यानी कि रात के 8 बजे तक।

तो दोस्तों अभी आपने सुना संगीत, शायरी और भव्य फिल्मांकन में लाखों दिलों पर राज किया था इस गीत ने। जी हाँ, फिल्म परदेश का ये सदाबहार नगमा, जहाँ प्रेम, सम्मान और भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को बड़े ही शानदार अंदाज में प्रस्तुत करता है। इस गीत में प्रेम का इजहार केवल शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं, संगीत और दिल की सच्चाई से होता है। इसकी मधुर धुन, शास्त्रीय संगीत और हल्की सी छुवन और दिल को छू लेने वाले बोल इसे आज भी उतना ही लोकप्रिय बनाते हैं जितने इसके रिलीज के समय थे। यानी कि दोस्तों इस सुरीली महफिल में, यानी कि सेलुलॉइड सुपर हिट्स की इस सुरीली महफिल में ये गीत जो है हमें उस दौर में ले जाता है जब फिल्मी गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक एहसास हुआ करते थे। इस गीत की भव्य प्रस्तुति, रंगों से सजा माहौल और पर्दे पर कलाकारों की शानदार अभिव्यक्ति इसे एक यादगार सिनेमाई अनुभव बना देती है। यही वजह है कि यह गीत आज भी हर पीढ़ी के श्रोताओं की पसंद बना हुआ है। प्यार, अपनापन और खूबसूरत जज्बातों के साथ बिल्कुल सजा हुआ इस सदाबहार नगमा का हम तो आनंद ले ही चुके हैं। इस गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और संगीत से प्रयादा नदीम श्रवण ने और आवाज थी कुमार सानू और अलका याग्निक की। तो चलिए दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

तो से एक ऐसा गीत था जिसने अपनी मधुर धुन और सूफियाना अंदाज और गहरे एहसासों से श्रोताओं के दिलों में एक खास जगह बनाई। फिल्म कभी अलविदा ना कहना का ये सदाबहार गीत जी बिल्कुल हमें ये संदेश देता है कि सच्चा प्यार किसी नियम या परिस्थिति का मोहताज नहीं होता। जब दिल किसी को अपना मान ले तो उसकी आवाज हर डर और हर दूरी से बड़ी हो जाती है। यही भावना इस गीत के बोलों को और धुन में बेहद खूबसूरती से उभर कर सामने आती है। तो दोस्तों ये एक सिर्फ एक रोमांटिक गीत नहीं बल्कि दिल की अनकही बातों का एहसास है। शंकर एहसान लॉय का शानदार संगीत और गहरे अर्थों से भरे जावेद अख्तर के बोल। और दोस्तों इसकी आवाज़ जो है भावपूर्ण आवाज़ें इस गीत को और भी यादगार बना देती है। यही वजह है कि इस फिल्म के रिलीज के वर्षों बाद भी ये गीत सुनते ही दिल में एक अलग सी कशिश और सुकून का एहसास जाग उठता है। तो दोस्तों स्टूडियो में समय हो चला है 7:30 और

सुन रहे हैं कार्यक्रम सेलुलॉइड सुपर हिट्स अपनी दोस्त ज्योति के साथ सिर्फ और सिर्फ 107 एफएम रेनबो पर। तो चलिए दोस्तों, बातों और गीतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

ऐसा गीत था जिसने अपने सुकून भरे सखी गहरे एहसास और केके के दिल को छू लेने वाली आवाज के दम पर लाखों श्रोताओं के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली थी। जी बिल्कुल, ये फिल्म गैंगस्टर का सदाबहार नगमा था जिसमें प्यार, तड़प और इंतजार की भावनाओं को बेहद ही खूबसूरती से बयां करता है। इस गीत का संगीत सुनते ही मन एक अलग ही दुनिया में खो जाता है जहां हर धुन दिल की धड़कनों के साथ चलती महसूस होती है। और इस गीत की एक खास बात यह भी है कि इसमें अपनी भावपूर्ण आवाज से अमर बनाने वाले गायक केके ने इसे इतनी सहजता और गहराई से गाया है कि आज भी यह उनके सबसे पसंदीदा गीतों में गिना जाता है। संगीतकार बिल्कुल प्रीतम की मधुर धुन और सईद कादरी के खूबसूरत बोल इस गीत को और भी यादगार बना देते हैं। तो दोस्तों, इस सुरीली महफिल में ये जो गीत एक रोमांटिक गीत नहीं बल्कि उन एहसासों का नाम है जो शब्दों से कहीं ज़्यादा दिल की खामोशी में महसूस किए जाते हैं। और यही वजह है कि आज भी ये हमारी प्लेलिस्ट में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अगले गीत की ओर रुख करने का समय आ चुका है क्योंकि स्टूडियो में समय हो चला है 7:38।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

दोस्तों, आप ये गीत सुन रहे थे फिल्म दिल तो पागल है से कोकिला कंठ लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में, और इस गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत से पिरोया था उत्तम सिंह ने। तो दोस्तों, हिंदी सिनेमा के सदाबहार गीतों से सजी आज की यह सुरीली महफिल अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। उम्मीद है कि ये सेलुलॉइड सुपरहिट्स का ये एक घंटा आपके लिए यादों, सुरों और खूबसूरत एहसासों से भरा रहा होगा। आज जिन गीतों के साथ हमने महसूस किया, उन्होंने कभी प्यार की मिठास जगाई तो कभी जिंदगी की अनमोल यादों को ताज़ा किया, तो कभी संगीत की उस ताकत का एहसास कराया जो सीधे दिल तक पहुंच जाती है। सिनेमा बदलता रहता है, दौर बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो समय की हर कसौटी पर खरे उतरते हैं, और यही गीत पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने वालों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखते हैं और हर बार एक नया एहसास दे जाते हैं। यही तो है सेलुलॉइड सुपर हिट्स की खासियत, जहां हर धुन के साथ जुड़ी होती है एक कहानी और हर कहानी में छुपी होती है अनगिनत यादें। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आज का यह संगीत सफर आपको पसंद आया होगा, अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपकी होस्ट संतोष ज्योति, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले किसी अंक में कुछ और सदाबहार नगमों, उनसे जुड़ी रोचक बातों और सुनहरे सिनेमाई सफर के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों के साथ खुशियां बांटते रहिए और संगीत को अपनी जिंदगी का हम सफर बनाए रखिए। लेकिन दोस्तों, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ठीक 8:02 से आपसे जुड़ चलेंगी, जी हाँ, हमारी अगली अनाउंसर यानी कि देविका गुप्ता। तो दोस्तों, अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाजत, और जाते जाते आप सभी के लिए एक मधुर तराना छोड़े जाती हूँ। तो दोस्तों, यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए 107 FM रेनबो पर। तब तक के लिए दोस्तों, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

वेल फ्रेंड्स, बिन तेरे सनम इस गीत के साथ आप सभी का स्वागत है 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकल यार्स पर। 107 एफएम रेनबो के इस चैनल पर मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त और होस्ट देविका, लेकर कार्यक्रम जिसका नाम है जी हाँ छाया लोक। और छाया लोक लेकर रहूंगी आपके साथ पूरे 9 बजे तक। स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल समय 8:09:38, यानी कि ये सफर हो चुका है शुरू हमारे साथ का। आप सभी के साथ ये सफर चलेगा उतना ही लंबा जितनी दूरी है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। वैसे दोस्तों ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगला गीत है इसी इन्हीं शब्दों से जुड़ा हुआ। सुनिधि चौहान के साथ अरिजीत सिंह की आवाज, साथ ही है आवाज नीति मोहन की। कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, फिल्म का नाम चेन्नई एक्सप्रेस।

वेल फ्रेंड्स, सलमान खान के साथ मनीषा कोइराला की ऑन स्क्रीन जोड़ी थी बेहद खूबसूरत। फिल्म का नाम खामोशी और खामोशी फिल्म का ये बेहतरीन तराना आप सुन रहे थे 107 FM रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकली और पर। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ऐसे ही बेहतरीन तराने जो हैं आज के कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ेंगे कार्यक्रम छह लोग के अंतर्गत।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

दोस्तों, जमीर काजमी के खूबसूरत बोल, अनु मलिक की धुन और फिल्म का नाम फिर तेरी कहानी याद आई और अलका याग्निक और कुमार सानू की सुपरहिट जोड़ी ने इस गीत को बेहतरीन बना दिया। दोस्तों, एक बेहतरीन तराने को सुनने के बाद मन जो है वो इतना खुशनुमा हो जाता है कि और भी तरानों को सुनने के लिए उसके मन में जागती है लालच। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भी सुनना चाहते हैं और भी बेहतरीन तराने, तो मेरे पास ऐसे तराने का पूरा पिटारा है। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का अगला तराना। इस तराने को आप सुनेंगे एक बार फिर से, कुमार सानू की आवाज है, लेकिन इस बार जो फिल्म है उस फिल्म के बारे में आपको बता दूं, ये आप सुनेंगे कुमार सानू की आवाज में फिल्म सड़क से गीत। और इस गीत के बोल जो हैं वो लिखे हैं समीर ने और नदीम श्रवण ने इसे किया है कंपोज। आई होप आप समझ गए होंगे कौन सा गीत है, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए पेश है ये तराना।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

वेल फ्रेंड्स, आप सुन रहे थे ये गीत बॉम्बे जयश्री की आवाज में। फिल्म का नाम रहना है तेरे दिल में। स्टूडियो की घड़ी में समय 8:52 और 45 सेकंड।

0: हो गए।
1: वेल फ्रेंड्स, इस गीत को सुनते सुनते स्टूडियो की घड़ी ये इशारा कर रही है कि आपसे लेना है विदा। चलते चलते परम सुंदरी से परदेसिया सुनते सुनते दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट देविका को इजाजत। गुड नाइट, शब्बा खैर।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: तुम्ही सुन छो लव जंक्शन, लव जंक्शन ভালোবাসার only destination, Love Junction 107 FM Rainbow Day।

0: खबर आई है पीटीआई से, जलसे में मंत्री जी बोले,
1: देश से गरीबी हटानी है, देश से गरीबी हटानी है।
0: एक बूढ़ा गरीब बोला,
1: मंत्री जी ये खबर तो बहुत ही पुरानी है।
0: इवनिंग न्यूज़। छोटे नोटों का है बोलबाला, बड़े नोटों का है मुंह काला। छोटे नोटों का है बोलबाला, बड़े नोटों का है मुंह काला।
1: इसे कहते हैं सोशलिस्ट।
2: सोशलिस्ट नहीं है, सोशलिज्म।
0: अरे भाई इतना आता तो लीडर ना बनता। 20 पैसा निकालो, 20 पैसा। हल्लो।

ईगो का झगड़ा, नाम और तारीख का चक्कर है दोस्तों, वरना हर खबर लौट कर आती है इस संसार में, आती है जाती है, आती है जाती है, जाती है आती है।

0: पता नहीं मर के गिरा या गिर के मरा, परंतु इसे कहते हैं मॉडर्न डेथ, अकस्मात मृत्यु। इवनिंग न्यूज, इवनिंग न्यूज, इवनिंग न्यूज। राम स्वरूप ने कत्ल किया, परिणाम स्वरूप पकड़े गए।
1: क्या
0: भाई? राम स्वरूप ने कत्ल किया और परिणाम स्वरूप पकड़े गए। इसे कहते हैं कंफ्यूजन।
1: कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन इज्म बोलो।
0: अरे बाबू कितने इज्म, इज्म आता तो लीडर ना बनता। 20 पैसा निकालो भाई और ये लो। इवनिंग न्यूज, इवनिंग न्यूज, इवनिंग न्यूज। और ये फिल्मी खबर देखिए।

0: फलस्वरूप फीनासार जंजाल में और प्रोड्यूसर और डायरेक्शन अस्पताल में। इवनिंग न्यूज। लीजिए सुनिए, खबर ये आई है, उड़ती चिड़िया ने फैलाई है, भाई की साली भगाकर ले गया एक भाई।
1: क्या क्या क्या कहा?
0: भाई की साली भगाकर ले गया एक भाई।
1: लो, अपनी खबर भी छप गई।
2: अरे नहीं बाबा, ऐसा तो पानीपत में भी हुआ था।
0: नाम और तारीख का चक्कर है दोस्तों, वरना हर खबर फिर लौट कर आती है इस संसार में। आती है जाती है, आती है, जाती है, आती है।